नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआई प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज टोरंटो में कनाडा में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में आए आर्थिक बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के माध्यम से व्यापार, निवेश, नवाचार और लोगों के बीच आपसी सहयोग के क्षेत्रों में उभर रहे अपार अवसरों पर भी जोर दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज महाराष्ट्र के अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। नागपुर, गढ़चिरौली और अकोला जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस वर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था में स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग का अभ्यास अनिवार्य है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आज अपने कैबिनेट की बैठक करेंगे। पूर्व राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड सहित कैबिनेट के सभी सदस्यों के इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और उनके शीर्ष अधिकारी विदेशी और घरेलू दोनों ही मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब ईरान ने अमरीका पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक का सेंसेक्स 69 अंक बढ़कर 76,079 पर था। निफ्टी 50

लंदन। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत कुछ दे देती है लेकिन हम उसे महसूस करना भूल जाते हैं, और कभी कभी छोटी सी खुशी ही दिल को पूरा भर देती है। शायद इसीलिए खुश रहने के लिए किसी बड़ी वजह की नहीं, बस थोड़े से एहसास की जरूरत होती है। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं घर आंगन, एक ऐसी जगह जहाँ बात होती है उन एहसासों की जो शब्दों में नहीं रिश्तों में बसते हैं, जहाँ हर कहानी किसी न किसी अपने से जुड़ जाती है। इन्हीं खूबसूरत एहसासों के साथ हम आ गए हैं आपके बीच 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड पर। साथ ही आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। आज इस सफर में आपके साथ मैं हूँ, आपकी अपनी रेडियो हम सफर सोनाली। तो आइए कुछ पल अपने लिए चुरा लीजिए और मेरे साथ चलिए अपने ही घर आंगन में।

आप बेगाने थोड़ी ना हैं, आप तो हमारे अपने हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ ये जो अपनापन है ये हम जोड़ पाते हैं एक ही माध्यम से, जो है हमारा ईमेल आईडी। जी हाँ, वो है fmgoldga@gmail.com। और आपने ये जो गाना सुना ये था फिल्म आंसू बन गए फूल से, और इसमें स्वर थे किशोर कुमार के साथ आशा भोसले के। जी हाँ श्रोताओं, समस्या का समाधान एक ही है, क्षमा मांग लो या क्षमा कर दो, है ना। देखिए ये स्वामी विवेकानंद जी के विचार हैं, और आप भी मानेंगे कि जीवन में कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो किसी बड़ी वजह से नहीं बल्कि छोटे छोटे अहम और अनकही बातों से दूर हो जाते हैं। कई बार हम सही तो होते हैं मगर संबंध हार जाते हैं। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद का यह विचार हमें बहुत सरल लेकिन गहरी सीख देता है। समस्या का समाधान, जैसे कि हमने आपको बताया कि या तो आप क्षमा कर ले या फिर क्षमा मांग ले। क्षमा केवल दूसरे व्यक्ति को नहीं स्वयं को भी शांति देती है, क्योंकि मन में जो जमा नाराजगी है ना वो धीरे धीरे रिश्तों की मिठास को कम कर देती है। कभी एक कदम झुक जाना और एक शब्द माफ कीजिए कह देना या किसी को दिल से क्षमा कर देना कई टूटते रिश्तों को फिर से जोड़ सकता है। आखिर रिश्ते जितने से अधिक महत्वपूर्ण होता है उन्हें सहज कर रखना, है ना।

फिल्म गुड्डी में आप सुन रहे थे वाणी जयराम की आवाज में ये गीत, और इनका साथ दिया था उनके कई साथी कलाकारों ने भी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हम आकाशवाणी के स्थापना के 90 वर्ष को यहाँ पर मना रहे हैं, तो आइए बात करते हैं आकाशवाणी की ही। एक समय था जब सुबह की शुरुआत मोबाइल की घंटियों से नहीं बल्कि आकाशवाणी के संकेत धुन से हुआ करती थी। भोर की शांति में जैसे ही ये मधुर सुनाई देती थी, घर भी धीरे धीरे जागने लगता। रसोई में चाय चढ़ती रहती, अखबार दरवाजे पर गिरता, और इसी बीच आकाशवाणी से प्रसारित वंदनवार का भक्ति संगीत सुबह को एक अलग ही आत्मीयता से भर देता था। इसके बाद समाचार प्रभात सुनना कई परिवारों की दिनचर्या का हिस्सा हुआ करता था। देश दुनिया की खबरें सुनाने वाली गंभीर और संतुलित आवाजें लोगों के मन में बस जाती थी। उस दौर में ना बहुत से ऐसे समाचार वाचक हुए जैसे मेलविन डिमेलो, देवकी नंदन पांडे, सुरजीत सेन, लतिका रत्नम और विनोद कश्यप। ये समाचार वाचकों की आवाजें ना घर घर में पहचानी जाती थी, और न लोग उन्हें देखे बिना भी जैसे इनकी आवाज के जरिए ही उन्हें पहचान लेते थे। सुबह 7:45 बजे प्रसारित होने वाला शास्त्रीय संगीत का लोकप्रिय कार्यक्रम संगीत सरिता भी श्रोताओं की सुबह का अहम हिस्सा था और है, जो आज भी अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। भारतीय शास्त्रीय संगीत को सहज ढंग से समझने वाला यह कार्यक्रम पीढ़ियों से संगीत प्रेमियों के बीच लोकप्रिय रहा है। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात है, उस दौर में ही नहीं आज भी कई लोग अपनी घड़ियों का जो समय है ना, वह आकाशवाणी के समय संकेत और समाचारों के प्रसारण से मिलाते हैं। आकाशवाणी की समयबद्धता पर लोगों का भरोसा आज भी वैसा ही बना हुआ है। कई घरों में बच्चे स्कूल की तैयारी करते हुए रेडियो सुनते थे, तो बुजुर्ग विविध भारती

गंगा गीत और हवा महल जैसे कार्यक्रमों की चर्चा किया करती थी। रेडियो केवल सूचना या मनोरंजन का माध्यम नहीं था, यह घर के वातावरण का हिस्सा था। उसकी आवाज में एक अपनापन, एक ठहराव है। आकाशवाणी आज भी नए कलेवर में बहुत से FM चैनल्स और मीडियम वेव चैनल्स के जरिए और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी नित नए कार्यक्रमों के जरिए श्रोताओं के दिलों में राज कर रही है। आज समय बदल गया है, सुबह हमारी तेज हो गई है, लेकिन आकाशवाणी की भी आत्मीय सुबह आज भी स्मृतियों में उसी गर्माहट के साथ बसी हैं

0: फिल्म हैसियत में आप सुन रही थी किसी दास की आवाज में ये गीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर कार्यक्रम घर आंगन में, जो आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 MHz पर। आपके साथ मैं हूं आपके रेडियो हम सफर सोनाली। आज के डिजिटल दौर में ना बच्चों के हाथ में किताबों की जगह धीरे धीरे स्क्रीन ने ले ली है, मानेंगे ना। और जानकारी तो अभी क्लिक पर मिल जाती है, लेकिन किताबें केवल जानकारी नहीं देती थी, वे बच्चों की सोच, कल्पना और संवेदनशीलता को भी आकार देती थी और हैं। देखिए, बचपन में पढ़ी गई कहानियां, कविताएं और चित्र, और उनमें जो ये जो पुस्तकें होती थी ना जिनमें चित्र होते थे, उनका असर केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहता था। वे बच्चों को धैर्य सिखाती हैं, नए सपने देखने की प्रेरणा देती हैं और सही गलत को समझने की समझ भी विकसित करती हैं। एक बच्चा जब कहानी पढ़ता है ना, तो वो केवल शब्द नहीं पढ़ रहा होता, बल्कि वो पात्रों के साथ हंसता है, उनके दुख महसूस करता है और धीरे धीरे एक बेहतर इंसान बनना सीखता है। आज जरूरत इस बात की है कि घरों में किताबों के लिए एक

कोना फिर से बनाया जाए, मानेंगे ना? और माता पिता यदि बच्चों के साथ बैठकर पढ़ें, उन्हें कहानियां सुनाएं और किताबों को उपहार देने की आदत उन्हें विकसित करें, तो पढ़ने का जो संस्कार है ना, वो सहज रूप से बच्चों के जीवन का हिस्सा बन सकता है। क्योंकि बचपन में जो हाथ किताबों तक पहुंचते हैं, वे अक्सर सपनों तक पहुंचने का रास्ता पा लेते हैं। देखिए, इसी पर एक छोटी सी कविता आपके सामने रख रही हूँ। किताबें सिर्फ कागज नहीं, ये बच्चों की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। किताबें सिर्फ कागज नहीं, ये बच्चों की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। धीरे धीरे उनकी छोटी दुनिया में नए सपनों के रंग भरती हैं। कभी कहानी बनकर हंसाती हैं, कभी चुपके से सीख दे जाती हैं। जब बच्चे किताबों से दोस्ती करते हैं, उनकी सोच हमेशा बड़ी हो जाती है। और जब आपकी सोच बड़ी होती है, आपके जीवन में खुशियां होती हैं, तो आपको सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, आपको कायनात की हर चीज बहुत सुंदर लगने लग जाती है।

बालिका वधु, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज थी अमित कुमार की। दोस्तों, आपके साथ जो प्यार है, जो एक रिश्ता है, उसकी जो एक हमें झलक है, वो आपकी ईमेल के माध्यम से हमें मिलती है। तो देखिए हमारे साथ जुड़े कौन हैं। जी हाँ, ये है नवीन भाटिया जी, मोतीनगर नई दिल्ली से लिखते हैं। सोनाली जी नमस्कार। दूसरों को उतनी जल्दी माफ कर देना चाहिए जितनी जल्दी हम ईश्वर से खुद के लिए माफी की उम्मीद रखते हैं। बहुत सही बात आपने कही है, और ये बात आपने हमारी उस विचार के लिए के साथ जोड़कर कही है जिससे हमने प्रोग्राम की शुरुआत की थी। धन्यवाद आपका। फिर इसके बाद हमारे साथ कौन जुड़े हैं। जी हाँ, ये है गौरी शंकर जी, और ये नांगलोई से हमारे साथ जुड़े हैं। लिख रहे हैं, सोनाली बेटा राम राम। मुझे याद है रेडियो सुनते हुए करीब 60 साल से ज्यादा हो गए हैं। एक दिन भी ना सुनी तो अजीब सा लगता है। उस समय विविध भारती और रेडियो सिलोन सुनते थे, आज भी यही आदत है रेडियो सुनने की। आगे आप लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम जानदार पेश होता है और गानों में भी तबीयत खुश हो जाती है। शुक्रिया। तो आपका भी शुक्रिया गौरी शंकर जी, हमारे साथ बने रहने के लिए। फिर एक और हमारे पास चिट्ठी आई है, ये आई है सुदर्शन मुखी जी की, इनके साथ अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। लिख रहे हैं, आदरणीय सोनाली जी सादर प्रणाम, आपको भी मेरा प्रणाम। और आप लिख रहे हैं कि आपको प्रस्तुति बहुत अच्छी लग रही है, अनमोल बातें हैं, रोचक जानकारियां हैं। फिर आप लिखते हैं, दो बहुत अच्छी बातें लिखते हैं कि सबसे बड़ी सीख है अपनों से हार जाना, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। फिर एक और चीज लिखते हैं कि रिश्ते और विश्वास खराब एक पल में किए जा सकते हैं, जबकि उनको बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और देखिए, ऐसे ही रिश्ते हमने भी आपके साथ बनाए हैं, तो इस रिश्ते को बनाए रखिएगा और हमारे साथ हर दिन जुड़िएगा, कहा घर आंगन में। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए गर्मी का मौसम आते ही बिजली की बढ़ती खपत और ऊर्जा संरक्षण जैसे विषय फिर से चर्चा में आ जाते हैं, है ना। अब देखिए क्या होता है कि ऐसे समय में सौर ऊर्जा न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी मानी जा रही है, बल्कि आम लोगों के लिए बचत का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बनती जा रही है। इसी दिशा में ना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है एक योजना, जिसकी बात आज हम आपके साथ कर रहे हैं। वो कौन सी है? वो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आइए इसके बारे में आपको और भी बातें बताती हूँ। जैसे देश में ना सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। ये योजना जो है ना, ये भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत संचालित की जा रही है। अब दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत ना घरों की छतों पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है, ताकि लोग स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग कर सकें और बिजली खर्च में राहत पा सकें। योजना का लाभ लेने के लिए जो आवेदक है ना, उसका वो भारतीय नागरिक होना जरूरी है, उसके पास खुद का घर होना और एक वैध बिजली कनेक्शन होना बहुत जरूरी चीज है। साथ ही घर की छत सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। और जिन उपभोक्ताओं ने पहले किसी अन्य सरकारी रूफटॉप सोलर सब्सिडी योजना का लाभ लिया है ना, वे इसके लिए पात्र नहीं माने जाते हैं। मतलब आपको जो भी आपको यहाँ पर अगर आवेदन करना है, तो पहली बार ही आवेदन करने वाले होने चाहिए। सरकार के अनुसार इस योजना का उद्देश्य देश के अधिक से अधिक घरों और को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। योजना के लिए आवेदन और विस्तृत जानकारी आप इसके आधिकारिक पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हैं, जो है solarrooftop.pmsuryaghar.gov.in।

ये है सोलर रूफटॉप, यानी solaroftop.pmsuryaghar.gov.in। आज जब बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है ना, ऐसे समय में सौर ऊर्जा जो है भविष्य की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता और एक बहुत अच्छा स्रोत बनती जा रही है। तो क्या है ना कि अब घरों की छतें सिर्फ छांव ही नहीं देंगी, बल्कि ऊर्जा और बचत का नया रास्ता भी बनेंगी।

चरेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे फिल्म तराना में। दोस्तों, आज ना डिजिटल तकनीक केवल सुविधा का माध्यम नहीं रही, बल्कि ये शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय और संवाद का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में ना महिलाओं की डिजिटल दुनिया में बढ़ती भागीदारी समाज में एक बहुत सकारात्मक बदलाव का संकेत मानी जा रही है। आज महिलाएं ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, घर से छोटे व्यवसाय चला रही हैं, डिजिटल भुगतान का उपयोग कर रही हैं और डिजिटल माध्यमों के जरिए अपनी प्रतिभा और विचारों को नई पहचान दे रही हैं। कई महिलाएं घर के बने उत्पाद, हस्तशिल्प, कपड़े और खाने की सामग्री का व्यवसाय भी ऑनलाइन माध्यमों से बहुत सफलतापूर्वक कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल साक्षरता के प्रयासों ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ाया है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी कई महिलाएं अब ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल भुगतान का उपयोग कर रही हैं। दोस्तों, सरकार की जो डिजिटल साक्षरता अभियान जैसी जो पहलें हैं और कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC, इनके माध्यम से महिलाओं को डिजिटल सेवाओं और ऑनलाइन प्रक्रियाओं की जानकारी दी जा रही है। आज महिलाएं केवल उपभोक्ता नहीं रही, बल्कि डिजिटल माध्यमों पर कंटेंट निर्माता, उद्यमी और बहुत अच्छी प्रोफेशनल्स के रूप में भी अपनी पहचान बना रही हैं। कई महिलाएं हैं जो ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, तो बहुत सी महिलाएं हैं वो घर से ही काम कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। हालांकि इसके साथ साइबर सुरक्षा और डिजिटल जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है। इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग, व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के प्रति जागरूक होना

समय की एक बहुत बड़ी जरूरत है। जब महिलाएं डिजिटल रूप से सशक्त होंगी ना, तब परिवार और समाज दोनों उनसे ज्यादा सशक्त होंगे। तो तकनीक केवल मशीनों की दुनिया नहीं है दोस्तों, यह अवसरों की भी दुनिया है। और आज महिलाएं इस दुनिया में आत्मविश्वास के साथ अपनी जगह बना रही हैं। उन्हें सपनों में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के जो सपने उन्होंने देखे हैं, वो सपने उनकी जिंदगी में खुली आंखों से भी देखे जा रहे हैं और अब वो बहुत आगे बढ़ रही हैं।

फिल्म गोलमाल में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। अब देखिए, सपने तो तब आएंगे जब नींद आएगी, और नींद तब आएगी जब हमको जो हमारा माहौल है वो ठंडा मिलेगा। और इस भीषण गर्मी में हम सभी इतने परेशान हैं कि हम लोग बस इस गर्मी से खुद को बचाने के उपाय सोचते रहते हैं। देखिए, अब लू का ऑरेंज अलर्ट कई जगहों पर जारी हो चुका है, और ऐसे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हम सभी से इस गर्मी में, इस भीषण गर्मी और लू से बचने की हम सभी से अपील की है, और बहुत से उपाय भी उन्होंने बताए हैं। देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि गर्मी में लू यानी हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। हमें शरीर में पानी

कमी नहीं होने देनी है। प्यास न लगने पर भी रुक रुक कर दिन भर में कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पीजिए। घर से बाहर निकलने से पहले 1-2 गिलास पानी या छाछ पीकर जरूर निकलें। और ना शरीर को ठंडा रखने के लिए आप ना नारियल पानी, नींबू पानी, लस्सी और मौसमी फलों जैसे तरबूज, खीरा, खरबूजा इनका सेवन बढ़ाएं। जितना हो सके कॉफी और चाय और दूसरी तरह के किसी भी नशे की चीज से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन बढ़ता है। फिर आप सही पहनावा जरूर रखें। देखिए गहरे रंग के कपड़े जो होते हैं वो गर्मी सोखते हैं, इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि आप सूती के ढीले ढीले कपड़े पहने। बाहर जाते समय हमेशा गमछा या दुपट्टे से सिर और कान को अच्छे से ढकें। हाँ, और आंखों को धूप से बचाने के लिए सनग्लासेस और सिर के लिए टोपी का इस्तेमाल जरूर करें। धूप में बाहर निकलते समय सनस्क्रीन का प्रयोग करने से आपके स्किन को बहुत लाभ होगा, और हमेशा एक छाता जरूर साथ रखें। तो बस ये कुछ उपायों का आप अपने जीवन में पूरा पूरा उपयोग कीजिए और इस गर्मी से अपने आप को और अपने परिवार को बचा के रखिए।

दोस्तों इस गीत के साथ जो है फिल्म सितमगर का और आवाज है किशोर कुमार के साथ आशा भोसले की। इस गीत के साथ अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी क्योंकि घड़ी इशारा कर रही है आपसे और बात हम और नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो हम सफर सोनाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन। घर आंगन

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की

0: संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एफआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एफआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग भारत के प्राचीन ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और निवारक स्वास्थ्य देखभाल तथा संतुलित जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज दोपहर के कारोबार में 41 अंक बढ़कर 76,051 जबकि निफ्टी 21 अंक के वृद्धि के साथ 23,935 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Supreme Court today upheld the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls done by the Election Commission of India and observed that electoral SIR advances the constitutional imperative of free and fair elections. The court held

दोस्तों आज हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे वक्त के सफर पे और साल होगा सन 1965। जी हाँ, आप जानते ही हैं कि हम हर रोज एक फिल्म चुनकर लाते हैं आप सभी के लिए, और आज जो फिल्म हम चुनकर लाए हैं वो सन 1965 की है। एक ऐसा दौर जब पर्दे पर रोमांस की परिभाषा लिखी जा रही थी, जब कश्मीर की वादियों में मोहब्बत मुस्कुरा रही थी, और जब ओपी नैयर साहब की धुनों पर पूरा हिंदुस्तान झूम रहा था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज सिप्पी फिल्म्स की उस शानदार जानदार सदाबहार म्यूजिकल हिट फिल्म जिसका नाम सुनते ही आपका जो दिल है वो बिल्कुल जोर जोर से झूमने लगेगा, जोर जोर से गाने लगेगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल पहचान जाएंगे कि वो कौन सी फिल्म है। तो लीजिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत इसी फिल्म से। वो फिल्म कौन सी है ये आप हमें जरूर बताइएगा।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 1:10 हुए और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म का। एक ही फिल्म कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत खैर मकदम करती हूँ मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

गाने को सुनते सुनते हमें आंखों के सामने आ गए विश्वजीत और कातिलाना आंखों से बिजली गिराती हुस्न की मल्लिका आयशा पारेख। निर्देशक अमर कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म मेरे सनम। जी दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं सिर्फ यही फिल्म मेरे सनम। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि हम कहेंगे कि खूबसूरत नजारों, बेहतरीन अदाकारी और लाजवाब संगीत का एक ऐसा गुलदस्ता है जिसकी खुशबू आज भी इतने बरसों के बाद भी उतनी ही ताजा है जितनी उस वक्त में थी। और वाकई में गीतों को सुनकर आपको भी यही महसूस होगा।

दोस्तों, इस फिल्म जो फिल्म हम आज लेकर आए हैं मेरे सनम, अगर हम बात करें इस फिल्म के संगीत की तो लाजवाब संगीत, और कहेंगे कि इस फिल्म का जो एक प्लस पॉइंट था वो इस फिल्म का संगीत था। जी हाँ, कहानी और अदाकारी वो सब प्लस पॉइंट था, लेकिन उसमें संगीत का भी एक बहुत बड़ा रोल था। और ये फिल्म के संगीतकार ओपी नैयर साहब और साथ में गायक मोहम्मद रफ़ी साहब के सुनहरे जुड़ाव की सबसे बड़ी और कहें कि सबसे आखिरी फिल्म भी रही, क्योंकि इसके कुछ वक्त के बाद दोनों के बीच एक छोटी सी बात पर अनबन हो गई थी। और हुआ ये था कि रफ़ी साहब एक रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ा लेट से पहुंचे, उसके बाद नैयर साहब नाराज़ हो गए। बहुत सालों तक उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ काम ही नहीं किया, और उसके बाद ओपी नैयर साहब ने अपनी आवाज़ को चुना महेंद्र कपूर के रूप में। जी हाँ दोस्तों, रफ़ी साहब जो कि ओपी नैयर साहब की आवाज़ थे हर फिल्म में, वो हट गए और उनकी जगह पर महेंद्र कपूर साहब को लिया गया। लेकिन अभी इस फिल्म की हम बात करते हैं, बाकी की बातें बाद में करेंगे। फिल्म जो है ये हमारी, इस फिल्म का सबसे जो ब्लॉकबस्टर गाना जो हम अभी आपको सुनवाने वाले हैं, जिसमें विश्वजीत एक खुली जीप में नजर आते हैं चलाते हुए। उसकी शूटिंग के दौरान विश्वजीत को गाड़ी चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन ये सीन शूट होना था गाड़ी चलाते वक्त, तो इसका जो एक उपाय निकाला गया कि गाड़ी को एक टो ट्रक से खींचकर आगे आगे चलाया जा रहा था, और विश्वजीत सिर्फ स्टेयरिंग घुमा रहे थे, दिखा रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे कि वो व्हील को संभाले हुए और गाड़ी वही चला रहे हैं। और वाकई में वो इतने परफेक्शन के साथ में किया कि कोई भी इस चीज को पहचान ही नहीं पाया कि विश्वजीत सचमुच में गाड़ी चला रहे हैं या फिर ये एक्टिंग कर रहे हैं। ये था उनके एक्टिंग का जादू। तो लीजिए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये खूबसूरत सा

जी दोस्तों, फिल्म मेरे सनम और विश्वजीत साहब ने जो स्टाइलिश सफारी सूट पहना है, गले में मफलर और हाथ में सिगार वाला लुक, भाई वाह, जो लुक था वो उस वक्त में लोगों ने एक फैशन ट्रेंड सेट कर दिया था। और स्पेशली दिल्ली और मुंबई के जो कॉलेजेस थे उसमें लड़कों ने उनके इस लुक को इतना कॉपी किया कि हर कोई इसी अंदाज में नजर आता था। लेकिन आपको मालूम है, विश्वजीत इस किरदार के लिए पहली पसंद नहीं थे। जी हाँ, क्योंकि इस फिल्म के जो मेकर्स थे उनकी पहली पसंद थे सदाबहार अभिनेता देवानंद साहब। भाई हूँ भी क्यों ना, उनका मिजाज जो था वो बिल्कुल इस फिल्म के मिजाज जैसा था। गाने उनके रोमांटिक अंदाज पर बिल्कुल फिट बैठते थे, लेकिन कोई वजह ऐसी रही कि जिस वजह से बात नहीं बन पाई और ये फिल्म आकर गिरी विश्वजीत की झोली में, जिन्होंने इसे अपने करियर की सबसे यादगार फिल्म बना दिया। जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए सुनते हैं खूबसूरत संगीत मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म मेरे सनम से।

मेरे सन में विश्वजीत साहब के अंदाज के तो सब दीवाने रहे, लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म में विलन का किरदार निभाया था प्राण साहब ने, और उनका स्टाइलिश अंदाज, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी जबरदस्त थी कि लोग हीरो के साथ साथ उनके अंदाज के भी दीवाने हो गए थे। और साथ ही साथ मुमताज जो थी इस फिल्म में, उनके साथ उनका चुलबुलापन जिसने इस फिल्म में लगा दिए थे चार चांद। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में मुमताज ने कमली नाम का एक नेगेटिव किरदार निभाया था, एक वैम्प का किरदार निभाया था जो कि प्राण के साथ मिलकर हीरो को फंसाती है। और इस फिल्म में उनके ऊपर गीत भी फिल्माया गया था, वो गीत हम आपको सुना चुके हैं, और वो इतना हिट हुआ था कि इसने मुमताज के करियर को एक अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। और यही फिल्म थी जिसके बाद मुमताज लीड एक्ट्रेस के रूप में आने लगी। जी हाँ दोस्तों, फिल्म की कहानी और भी किरदार हम आपको बताएंगे। और अगर हम बात करें फिल्म की कहानी के लिए, तो जो फिल्म की कहानी है वो भी बहुत ही प्यारी सी है, खूबसूरत सी है, और इसकी शुरुआत होती है थोड़ी सी गलत फहमी के साथ। साधना यानी कि आशा पारेख अपनी माँ और अपनी सहेलियों के साथ जाती है कश्मीर घूमने के लिए, जहाँ पर भारी बारिश होती है और उनको रुकना पड़ता है एक लॉज में, जिसका मालिक होता है कुमार, कुमार यानी कि विश्वजीत। यहाँ पर गलत फहमी की वजह से साधना और उसकी माँ कुमार को एक चोर समझ लेती है, और दोनों के बीच में झगड़ा शुरू होता है। और यही झगड़ा जो होता है धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। धीरे धीरे साधना को कुमार की अच्छाइयों का एहसास होता है, दोनों प्यार करने लगते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है तब जब इस फिल्म के विलन श्याम यानी कि प्राण और उसके साथी कमली यानी कि मुमताज मिलकर कुमार को फंसाते हैं और उसकी जो जायदाद है उसको हड़पने की साजिश करते हैं। कुमार की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं साधना के सामने ताकि वो दोनों अलग हो जाएं, लेकिन कुमार सभी साजिशों को हटाता है, सबका पर्दाफाश करता है, अपने आप को बेगुनाह साबित करता है, और हमेशा की तरह से हैप्पी एंडिंग होती है, दोनों प्रेमी एक साथ मिल जाते हैं। ये थी इस फिल्म की खूबसूरत सी छोटी सी कहानी। और भी बहुत सी चीज़ें हैं हम आपको बताएंगे, हमारे बहुत से श्रोताओं के संदेश भी हम तक आए हैं जिनके संदेश भी हम शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज़ में खूबसूरत सा गीत इसी फिल्म से।

दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम शामिल कर लेते हैं। पिपरिया से जुड़े हमारे साथ कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पुना राम देवांगन, कृष्णा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बब्रिश पवार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लिखते हैं कि मेरे सनम के कई खूबसूरत दृश्यों और गानों को कश्मीर की हसीन वादियों में फिल्माया गया था और इस फिल्म की शूटिंग सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत होने से ठीक पहले पूरी गई थी। शूटिंग के दौरान वहां का माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण हो रहा था, लेकिन पूरी टीम ने मुश्तैदी से काम किया और इस दौरान अभिनेता शशि कपूर भी अपनी फिल्म जब जब फूल खिलेगी वहां पर शूटिंग कर रहे थे। बहुत खूब बबलेश जी, खूबसूरत जानकारी के लिए। अगला संदेश हम तक पहुंचाया है गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंगल दलजीत सिंह, राजदीप गुरनूर, गुरलान, अविराज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये अगला जो संदेश है वो हमारे पास बबलेश जी का। उन्होंने एक बार फिर से बहुत अच्छी जानकारी दी है कि मुमताज जी उस वक्त साइड रोल और स्टंट फिल्मों की हीरोइन मानी जाती थी, लेकिन इस फिल्म से उनकी तरक्की हुई और वो काफी आगे पहुंची। मुकेश भट्टा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कनेरा मोहल्ला पटियाला से अगला जो संदेश है इसको हम तक पहुंचाया गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी जी ने। हीरामणि वर्मा जी हमारे साथ जुड़े दतरेंगी भट्टापारा से। सुनील पाठक, कमल पाठक, गाव्या मल्होत्रा, अनारकली बाजार जगराव पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्राम नागरकोरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी आराध्या साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन मुखिया, अनिता सिमरन मुखी जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता हमारे साथ जुड़े हैं। पारगंज मुल्तानी ढांडा से हमारे साथ जुड़े अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक के साथ। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा जुड़े हुए हैं। ग्राम शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता हमारे साथ जुड़े हैं। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुश्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायल, प्रथमेश प्रणाली, सर्वत सानवी, कल्पना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेहरू चौक पैटर्न से जुड़े हैं सुरेश जाधव, अनीता जाधव, सोनल प्रसाद जाधव के साथ। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से जुड़े हैं मोहम्मद शाह, खतीजा बेगम, अशफाक, आफरीन कौशल, अल्ताफ, नीलोफर, फातिमा के साथ। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जिव्यम जैन हमारे साथ जुड़े हैं। मालियान सरदनाज मेरठ से, जिला बालोद छत्तीसगढ़, ग्राम भाई भोईनापार लाटा बोर्ड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देव नारायण साहू, योगिता गीतिका, चंचल रानी, उमाबाई, गंगाराम साहू के साथ। देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर हमारे साथ जुड़े हैं। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्वला नवानकर, विशाल नवानकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छोटी बलिया करजत मुंबई से, अहमद फूल वाले, जूही इकबाल, इमरान कापसेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से, बिटिया आमना नसीन, आसमा परी, राबिया, मंतशा, अंशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भागवत वर्मा दतरेंगी से जुड़े हुए हैं, शांति देवी, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा के साथ। समडिल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति, राधे, दीपक, अंकुर, राघव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन जी एक बार फिर से जुड़े हुए हैं। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली।

अंसारी, राजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी बहादुरगंज गाजीपुर से, आजाद अली अनवर और रिजवान परवीन हमारे साथ जुड़े हैं। गांव फरियांसी जिला आजाद से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी। और ये अगला संदेश हम तक आया है और उसको पहुंचाने वाले हैं वीरगांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमीला बेन भावसार, भावेश कुमार सनी, जयमिन कुमार भावसार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप मकर, ज्योति मन्नत, भारत मकर हमारे साथ जुड़े हैं। कमल सहानी पिंगावाला चौक गुरैया जालंधर पंजाब से। और मोहम्मद सईद अब्बासी जी जुड़े हमारे साथ। निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजाना बान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों के साथ अगला संदेश हम तक पहुंचाया है। ये है भारत मक्कर, कमल सहानी पिंगावाला चौक गुरैया से। अगला संदेश आया है डीबी राणा, नेहरू विहार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये अगला संदेश फजिलका पंजाब से, भूषण खेरा, विशाल विशु गीत इनको अच्छे लग रहे हैं। और ये अगला जो संदेश है इसको भेजने वाले हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू जी। तो संजय डिंगिया, निमन डिंगिया, अपार डिंगिया हमारे बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों ये थे वो संदेश जिनके जरिए सभी हम तक जुड़े।

जी दोस्तों, हम सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से और ओपी नैयर साहब की रूहानी धुने मसरूर सुल्तानपुरी साहब के अल्फाज और मोहम्मद रफ़ी जी और आशा जी की आवाज़ में इस फिल्म को चार चांद लगा दिया और उस दौर को सुनहरे दौर में बदल दिया। लेकिन वक्त अब तेज़ी से बदल रहा है और हमें यानी कि प्रीति को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम की समाप्ति की, क्योंकि जो घड़ी की सुइयाँ हैं वो किसी के लिए भी नहीं रुकती हैं और अब मुझे इस सफ़र को यहीं पर रोकना होगा। लेकिन यादों का जो ये सफ़र है उसको लेकर वापस से आऊँगी, जाएगा कहीं नहीं। कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ फिर से एक बार हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: साहली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी अगले दो दिन तक गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। इधर बिहार, कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों और शुमाल मिश्री खत्ते में इतवार तक तेज बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। मौसमियात महकमे के मुताबिक अगले तीन चार दिन के दौरान केरला, माहे, लक्षद्वीप, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, रॉयलसीमा, जनूबी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और शुमाल मिश्री के बाद हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 इम्तहानात पेपर लीक मामले में दो और मुलजिमों को हिरासत में लिया है। एजेंसी ने अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्या नगर से 13 मुलजिमीन को हिरासत में लिया है। लातूर में मुकीम डॉक्टर मनोज शिरूरे नाम के एक मुलजिम को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के मुताबिक उसने तीन तलबा की मुलजिम पीवी कुलकर्णी से केमिस्ट्री के सवालात हासिल करने में मदद की खातिर अहम रोल अदा किया था, जिसमें मुलजिम कोचिंग सेंटर मालिक का बेटा शामिल है। अमरीका के सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान के इम्कानी साजिश होने पर सवाल उठाया है और यह भी कहा है कि वह गैर जानिबदार नहीं हो सकता, क्योंकि एक तवील अरसे से पाकिस्तान इसराइल की मुखालफत करता रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ग्राहम ने दावा किया कि ईरान के फौजी हवाई जहाज पाकिस्तान की फजाइया के हवाई अड्डों पर रखे जा रहे हैं और पाकिस्तानी रहनुमाओं की तरफ से इसराइल पर रायजनी परेशान कुन है। अकवाम मुत्तहदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे परवता नैनी अकवाम मुत्तहदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान पर शदीद नुक्ताचीनी की है और कहा है कि वह बराबर सरहद पार से दहशतगर्दी फैला रहा है। भारत के नुमाइंदे ने कहा कि उसे भारत के खिलाफ दहशतगर्दी को शह देने का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आज न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम राजस्थान रॉयल्स के मध्य मुकाबला होगी। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। फातह टीम फाइनल में जगह बनाने के लिए जुमे को गुजरात टाइटंस का मुकाबला करेगी। फाइनल इस महीने की 31 तारीख को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। कल रात धर्मशाला में खेले गए क्वालिफायर वन मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंची है। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी के इंतखाबी कमीशन के इख्तियार को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये लोगों की नुमाइंदगी से मुतालिक कानून 1950 से मुताबिकत रखता है। भारत और कनाडा ने 2030 तक बाहमी तिजारत को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक वसूल देने के अपने मुश्तरका अहद का इरादा किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते दर्जे हरारत के दरमियान लोगों से एहतियाती इकदाम करने पर जोर दिया है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 इम्तहानात के पेपर लीक मामले में दो और मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान बातचीत में इम्कानी साजिश की हैसियत से पाकिस्तान के रोल पर सवाल उठाया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the Winter News. The headlines. Supreme Court upholds Election Commission's power to conduct SIR of electoral rolls, says it is in consonance with Representation of the People Act 1950. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take precautions amid rising temperatures. IMD predicts severe heat wave conditions over Haryana, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha. India-Canada reaffirms shared objective of expanding bilateral trade to $50 billion by 2030. CBI arrests two more accused in NEET UG 2026 examination paper leak case. U.S. Senator Lindsey Graham questions credibility of Pakistan's role as possible mediator in U.S.-Iran talks, cites Islamabad's long-standing opposition to Israel. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to face Rajasthan Royals in eliminator match in Chandigarh this evening.

0: राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और 2 फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने

0: सासाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है, वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक गिलास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
1: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉ मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉ अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च

0: स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
1: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
2: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
3: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
0: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, 684 किलोहर्ट्ज़, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन पेश खिदमत है एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाइए।

0: लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
1: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
0: ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
1: और पगबंधी, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
0: भदोही, उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
1: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओ, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
0: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
1: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
0: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
1: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है
0: जी।
1: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
0: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुँचा और फिर सारी यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
1: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
0: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
1: जी,
0: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
1: जैसे
0: लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का,
1: जी,
0: सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
1: जी, इसीलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
0: जी,
1: अविमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
0: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहाँ तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
1: जी श्रोताओ, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
0: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
1: हाँ, वो क्या?
0: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
1: ये घटना क्या थी?
0: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
1: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहाँ तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
0: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
1: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।

0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
1: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
3: मश्क।
2: होशियार,
3: समझदार,
2: पेंसिल तराश,
3: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
2: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
3: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
2: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है

0: कैप्टन विक्रम बत्रा।
1: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
2: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
3: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
4: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
3: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
4: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाए हो नहीं सकता।
3: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
5: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
4: क्या बात है,
5: सुनकर ही जोश आ गया।
4: हाँ
5: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
6: युद्ध में तो जाने ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
2: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है।

ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है, और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परम वीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया, और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे, और वो था भारतीय सेना में भर्ती।

जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों

0: बाद भी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया। कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन वन, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन टू, दिन 19 जून 1999। स्थान 0.5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे 2 हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल 1 रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।

0: पैसा नहीं लौटेगा।
1: एक घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
0: अरे देख लेंगे।
2: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा, 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया।
3: हमला करो, दुर्गा माता की जय,
2: और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
4: कैप्टन विक्रम, 5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
5: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
4: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है, और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
5: धन्यवाद।
2: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो संभल कर अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
3: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
3: जी सर।
1: और तुम दाहिने तरफ जाओ।
3: जी सर।
4: हमला करो दुर्गा माता की।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबरा कर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
5: साहब जी, साहब जी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
1: नहीं, नहीं। तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
5: नहीं लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना

0: चढ़ जाओ,
1: मैं जा रहा हूँ।
0: साहब जी, साहब जी।
2: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
0: क्या हुआ तुम्हें? नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।
2: और तभी उन्होंने वीरगति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजयी तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: अभी तक आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग। मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज, मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्ज, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल की आवाज है। सामान अब से लेकर शाम 5 बजे तक अब हम
1: इस मजलिस में आप तमाम सामीन का खैर मकदम है। हमारी नशात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 1171 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। आइए एक नजर डालते हैं इस मजलिस में नशो नले प्रोग्रामों पर।

सहपहर 3:30 बजे जनाब शमी हनफी का तहरीर करदा फीचर आप सुनेंगे। साबिक वजीर आजम जनाब पंडित जवाहरलाल नेहरू की शख्सियत के हवाले से खुशबू का सफर। शाम 4 बजे आप लुत्फ अंदोज होंगे फिल्मी मौसीकी से। फिल्मी नाखों के प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। चार बजकर 50 मिनट पर खबरें नशर की जाएंगी और शाम 5 बजे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। ये था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: सीबीआई ने नीट यूजी 2026 इम्तिहानात पेपर लीक मामले में दो और मुलजिमों को हिरासत में लिया है। एजेंसी ने अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से 13 मुलजिमीन को हिरासत में लिया है। लातूर में मुकीम डॉक्टर मनोज शिरूरे नाम के एक मुलजिम को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान की जानिब से अब्राहम समझौते में शामिल होने के सवाल पर गौर करने से इनकार पर रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने शदीद नुक्ताचीनी की है। सोशल मीडिया एक पोस्ट पर उन्होंने कहा कि ईरान से वाबस्ता किसी भी सिफारतकारी में इस्लामाबाद का रोल मसला पैदा कर सकता है। अमरीका के सेनेटर ने दावा भी किया कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान के फौजी हवाई जहाज पाकिस्तान की फजाइया के हवाई अड्डों पर रखे जा रहे हैं। अमरीका के सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान के इम्कानी सालिस होने पर सवाल उठाया है और यह भी कहा है कि वो गैर जानिबदार नहीं हो सकता क्योंकि एक तवील अरसे से पाकिस्तान इसराइल की मुखालफत करता रहा है। अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे प्रवर थेथेनी अक़वाम-ए-मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान पर शदीद नुक्ताचीनी की है और कहा है कि वो बराबर सरहद पार से दहशतगर्दी फैला रहा है। भारत के नुमाइंदे ने कहा कि उसे भारत के खिलाफ दहशतगर्दी को शह देने का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आज न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम राजस्थान रॉयल्स के साथ खेलेगी। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। फातह टीम फाइनल में जगह बनाने के लिए जुमे को गुजरात टाइटंस का मुकाबला करेगी। फाइनल इस महीने की 31 तारीख को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी के इंतखाबी कमीशन के अख्तियार को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये लोगों की नुमाइंदगी से मुतालिक कानून 1950 से मुताबिकत रखता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते दर्जे हरारत के दरमियान लोगों से एहतियाती इकदाम करने पर जोर दिया है। आईएमडी ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में गर्मी में और तेजी आने की पेशगोई की है। भारत और कनाडा ने 2030 तक बाहमी तिजारत को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक वसत देने के अपने मुश्तरका अहद का इरादा किया है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान बातचीत में इम्कानी सालिस की हैसियत से पाकिस्तान के रोल पर सवाल उठाया है। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से इसराइल की मुखालफत किए जाने का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस मेरी पसंद। ये प्रोग्राम लेकर आपका दोस्त आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। इस प्रोग्राम में चंद दिलकश और खूबसूरत गजलें आपकी नजर करना चाहेंगे। पहली गजल है आशा भोसले की गई हुई, फिल्म है

देख रहा हूं, उस सब के बावजूद हिंदुस्तान के मुस्तकबिल में मेरा यकीन बहुत पुख्ता है। सच तो ये है कि अगर मेरे अंदर ये यकीन न होता तो मेरे लिए मौसर तरीके से काम करना भी मुमकिन न होता। हालिया वाकयात ने मेरे बहुत से पुराने ख्वाबों को

बड़े आदर्शों पर मबनी एक आजाद हिंदुस्तान की तामीर और ये कोशिश कि सबको तरक्की के एक से मौके मिले, ये कोशिश कि तहजीबों के और तसव्वुरात के रंग रंगधारे आपस में मिलजुल कर इर्तिका के एक ताकतवर दरिया की

सलमान को, मैं एक हिंदू हूं। हम अलग अलग अकीदे रख सकते हैं या चाहें तो कोई भी अकीदा ना अपनाए, लेकिन वो मुश्तरका तहजीबी मीरास जो तुम्हारी भी है और मेरी भी है, वो हर हाल में हमारी रहेगी। हमारा माजी एक है, इस माजी ने हमें आपस में बांध रखा है। फिर ऐसा क्यों हो कि हाल और मुस्तकबिल

0: साहिब हो, नेहरू जी ने ये अल्फाज आज से 40 वर्ष पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों और असातिज़ा को खिताब करते हुए कही थी। इन लफ्जों में छुपा हुआ संदेशा आज भी हमारे लिए बामानी है।
1: और साहिबो, इन लफ्जों का सिलसिला हमें दो रुखदादा यादों की एक बस्ती का रास्ता दिखाता है। वो बस्ती भी अलग अलग सिमतों से आती हुई लहरों को एक दूसरे से मिलाती है।

0: गंगा और जमुना के संगम पर बसा हुआ शहर इलाहाबाद, जहां मुगल बादशाहों ने बाग बनवाए और किले और मकबरे और मस्जिदें।
1: इस शहर का एक और नाम प्रयाग है, जहां कुंभ का मेला लगता है और जहां मुकद्दस गंगा और जमुना के अलावा

0: नेहरू जी का जन्म इसी शहर में हुआ था। यूनिवर्सिटी के करीब से एक सड़क जो संगम की तरफ जाती है, इसी सड़क पर एक खूबसूरत हवेली है, आनंद भवन।
1: आनंद भवन सिर्फ एक इमारत नहीं, एक तारीख

और लड़कपन की बहुत सी यादें आनंद भवन से मंसूब हैं। इस इमारत ने कितने मौसम झेले, दुख के और सुख के, गुलामी के और आजादी के। ये इमारत

अगर कोई भी मेरे बारे में कुछ सोचना पसंद करे, मैं चाहूंगा कि वो इतना जरूर कहे कि इस शख्स ने अपने तमाम तर दिल और दिमाग के साथ

0: शख्सियत के कई रूप हैं। एक सियासी मुदब्बिर,
1: एक दानिश्वर,
0: एक सामाजिक कारकुन,
1: एक कौमी मेमार,

0: किसी ने रंग
1: श्री प्रकाश ने कहा था
0: नेहरू जी को अपने बारे में बातें करने की आदत नहीं। अपनी अजमत को उन्होंने इस सहूलत के साथ संभाल रखा है कि वो बजाहिर आम इंसानों जैसे दिखाई देते हैं, हर जगह हर माहौल में खुश और मुतमईन, अपने गिर्दोपेश से अच्छी तरह हम आहंग।
1: नेहरू जी के एक दरीना रफीक, एक मुमताज सहाफी चिलापति राव के लफ्जों में,
0: उनकी शख्सियत बहुत मजबूत और मिली जुली थी। तालीम के लिहाज से अंग्रेज, सकाफत के एतबार से मुसलमान और पैदाइश के लिहाज से हिंदू, इस एक दहशत में कितनी कसरतें आबाद थी
1: और कैसी जिंदा तवाना फाल शख्सियत थी। एक शख्सियत जिसने अजमतों के हिसार में भी अपनी इंसानियत को महफूज रखा। अपने एक दोस्त के लफ्जों में,
0: जवाहरलाल बहुत सुबह सवेरे उठ बैठते थे, कुछ वर्जिश करते थे, फिर नाश्ता। मुख्तलिफ औकात के खानों में सबसे ज्यादा मजा उन्हें नाश्ते के वक्त आता था। खुद दलिया खाते, मेहमानों को बड़ी नफासत के साथ तराश कर फलों की काश पेश करते जाते, दिलचस्प कहानी सुनाते।
1: नाश्ते के बाद वो नीचे उतरते और बाहर जाते, मिलने वालों की एक भीड़ जमा होती,
0: उनसे फारिग होकर अपने पालतू जानवरों की फिक्र,
1: फिर दफ्तर की तरफ। एक एक मिनट का हिसाब मुकर्रर था।
0: सरकारी अहदेदार, बैरूनी मेहमान या दूसरे लोग, उनसे मुलाकातें, इतने में दोपहर आ जाती।
1: दिन का खाना बहुत हल्का होता था, कभी हिंदुस्तानी कभी मगरबी, फिर एक वक्फा आराम का
0: और फिर दफ्तर के काम, इस तरह शाम हो जाती।
1: शामों को कभी लोगों से मुलाकात और मजाकरात, कभी किसी जलसे से खिताब, कभी वक्त मिला तो कोई कल्चरल प्रोग्राम देख लिया।
0: खतों किताबत के मामले में भी वे बहुत चौकस थे, आने वाले हर खत का जवाब देते थे, बहुत से खत बोलकर लिखवाते, बहुत से खत खुद लिखते।
1: ये एक गैर मामूली इंसान की रोजमर्रा आम जिंदगी का बज़ाहिर आम सा खाका था। इसी खाके में हमें कई गहरे घने पुरतेज और पुर असरार नक्श भी नजर आते हैं।
0: वो आंखें जिन्होंने नेहरू जी को देखा था हमें बताती हैं
1: कि महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन की तरह आम आदमी में उनका यकीन बहुत मुस्तहकम था। वो आम आदमियों से आम आदमी की सतह पर मिलते थे, गुस्से या धमकी के बजाय हर एक को दलीलों से कायल करते।
0: उन्हें मामूली से मामूली काम करने में

0: ऐसी डिग्निटी अपनी अहमियत के बावजूद उनकी अपनी हस्ती का सबसे बड़ा अंशुद नहीं थी।
1: अपनियत की तरह सियासत थी, नेहरू जी के नजदीक अपनी हुदूद रखती थी।
0: उनके लिए सियासत अपने जिद्दोपेश के लोगों की खिदमत का एक वसीला थी,
1: और फिर खिदमत का ये सिलसिला भी अपने वतन की हदों से आगे पूरी इंसानी बिरादरी तक जा पहुँचा।
0: ये शख्सियत एक वसी कसूरी जिहाद शख्सियत की तरह

0: दूसरी तरफ माजी और हाल में एक नए रिश्ते की तलाश,
1: एक तरफ हकीकत पसंदी पर जोर,
0: दूसरी तरफ एक ख्वाब परस्त और रूमानी।
2: प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फारूकी के लफ्ज में,
0: पंडित जी हिंदुस्तान की आबरू, मशरक की इज्जत और तहजीब तरक्की की अलामत थे। उन्होंने तारीखी तकालीफ का जरा कद्र जखीरा छोड़ा है और अपने अदबी जौक, जौजते फिक्र, साइंसी मिजाज और नफ्सियाती बसीरत से फिक्र इंसानी को समझने की कोशिश की है।
1: उन्होंने तारीख को वाकयात की खतौनी नहीं बनाया, बल्कि उसे कौमी हाफजे की बाजियाब का जरिया बनाया है।
2: इसीलिए ये फैसला दुश्वार है कि वो बड़े दर्जे के सियासतदान थे या मुअर्रिख या अदीब।

तुमने अपने आप को अपनी तमाम कर

बनाया। एक नई माशरे

0: हुआ है।
1: रात दिन की मसरूफियतों के बावजूद अपनी जिंदगी के एक बड़े हिस्से में कैदोबंद की सख्तियां झेलते रहने के बावजूद,
0: समाजी तामीर और कौमी इर्तिका के कामों में मसरूफ रहने के बावजूद,
2: नेहरू जी ने अपने ख्यालों और ख्वाबों के चिराग रोशन रखे।
1: उन्होंने संगलाख जमीनों में फूल उगाए।
0: ये वाकया अहमदनगर के किले में असीली के जमाने का है। वक्त का सही मसरफ क्या हो, रफीकों ने फैसला किया सहन जो वीरान पड़ा हुआ है उसमें एक बाग लगाया जाए। मौलाना आजाद की जबानी ये कहानी सुनी।
2: जमीन की दुरुस्तगी का मामला इतना आसान न था। अहाते की पूरी जमीन दरअसल कले की पुरानी इमारतों का मलबा है। जरा खोलिए और पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े और चूड़े और रेत का बुरादा हर जगह निकलने लगता है।
1: तख्तों के दाग बेल डालकर दो दो तीन तीन फीट जमीन खोद दी गई। बाहर से मिट्टी और खाद मंगवाकर उन्हें भरा गया। कई हफ्ते इसमें निकल गए। जवानलाल सुबह शाम फावड़ा और कुदाल हाथ में लिए कुंकुंदन और काह बर आवर्दन में लगे रहते थे।

रंगारंग वो शख्सियत थी। इतनी रंगारंगी हमारी जिंदगी और हमारे मुआशरे में है। उसकी कामरानियों और कोशिशों का दायरा एक साथ कितनी दुनियाओं में फैला हुआ है। खुशबू की एक लहर है जो अपनी हद

सुनी होटल फिल्म का धमाला, आशा भोसले और मोहम्मद मनहर उदास की आवाजों में, नखमानिगार इंदिवर मौसीकी उषा खन्ना की।

सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश हम हिंदुस्तानी फिल्म कला लता मंगेशकर का गाया हुआ तर्ज बनाई है उषा खन्ना ने।

यह लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ ये गुलिस्ता हमारा फिल्म का नगमा, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, मौसीकी एस डी बर्मन की।

क्या होगा फिल्म का नगमा सुन रहे थे मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। और इस नगमे के साथ ही फिल्मी मौसीकी का ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 4:50 हुए हैं, अब खबरें नशे की जाएंगी। ये आकाशवाणी है, अब आप माजी दिल्ली से खबरें सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने वाटर फेरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी के इंतखाबी कमीशन के अख्तियार को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये लोगों की नुमाइंदगी से मुतालिक कानून 1950 से मुताबकत रखता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते दर्जा हरारत के दरमियान लोगों से एहतियाती इकदाम करने पर जोर दिया है। IMD ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में गर्मी में और तेजी आने की पेशगोई की है। भारत और कनाडा ने 2030 तक बाहमी तजारत को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक वसत देने के अपने मुश्तरका अहद का इरादा किया है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान बातचीत में इम्कानी साजिश की हैसियत से पाकिस्तान के रोल पर सवाल उठाया है। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से इसराइल की मुखालफत किए जाने का हवाला दिया है। इसराइल की फौज का कहना है कि उसने गजा में हमास की फौज के नए सरबराह मोहम्मद उदय को हलाक कर दिया है और उसने ही 7 अक्टूबर 2023 के हमलों की मंसूबा साजी की थी। और IPL क्रिकेट में आज शाम चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव फहरिस्तों पर खसूसी जाम नजरसानी की इंतखाबी कमीशन की कार्रवाई को कानूनी एतबार से जायज करार दिया है और यह भी कहा है कि आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए आइन में इस तरह की नजरसानी के लिए कहा गया है। अदालत आलिया ने कहा कि चुनाव कमीशन को अवामी नुमाइंदगी से मुतालिक कानून मजरिया 1950 की दफा 324 और इसके तहत बनाए गए जाब्तों के मुताबिक चुनाव फहरिस्तों पर खसूसी नजरसानी करने का इख्तियार हासिल है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची पर मुश्तमिल बेंच ने रिट दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए ये बात कही। इन दरखास्तों में गुज़श्ता साल जून में बिहार में वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जाम नजरसानी करने के इंतखाबी कमीशन के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से सुनाए गए इस फैसले में यह भी कहा गया है कि जब खुद कानून में इंतखाबी कमीशन को किसी भी वक्त खसूसी नजरसानी कराने को कहा गया है तो इस सूरत में कमीशन के नजरसानी के अमल को महज इस बुनियाद पर नाजायज करार नहीं दिया जा सकता कि मौजूदा तरीकाकार माजी में कराई गई नजरसानी से मुताबकत नहीं रखता। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि इंतखाबी कमीशन ने अपने कानूनी इख्तियार से तजावुज किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम गैंगटॉक में सिक्किम यूनिवर्सिटी के साथ में जलसे तकसीम इस्ताद में मेहमान खसूसी होंगी। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और वजीर आला प्रेम सिंह तवांग भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि 33 मजामीन में तकरीबन 14,000 डिग्रियां अता की जाएंगी। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कनाडा के अपने दौरे के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के सनतकारों और इजारा जाती सरमायाकारों के साथ कई आला सतही मीटिंगें की। कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा है कि इनका मकसद कलीदी शोबों में सरमायाकारी और तकनीकी इश्तराक को फरोग देना और बाहमी तआवुन को मुस्तहकम करना है। जनाब गोयल ने कनाडा के आलमी तजारत के वजीर मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की और हुकूमत सनत मजबूत इश्तराक पर मबनी ज्यादा मुतहरक कारोबारी इको निजाम की जरूरत को उजागर किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि तरफेन ने 2030 तक बाहमी तजारत को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक वसत देने के अपने मुश्तरका अहद का इरादा भी किया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जा हरारत में इजाफे के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो जहां तक मुमकिन हो एहतियाती इकदाम करें। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब

0: शक्तिशाली की हैसियत से पाकिस्तान के रोल पर सवाल उठाया है। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से इसराइल की मुखालफत किए जाने का हवाला दिया है। इसराइल की फौज का कहना है कि उसने गजा में हमास की फौज के नए सरबराह मोहम्मद दुदे को हलाक कर दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारे शुरू की घड़ी के मुताबिक शाम के 5 बजे चाहते हैं। हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब के 9:15 पर आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: सामिन मोहतरम, अभी तक आप हमारी नशरियात आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से समाप्त कर रहे थे। मेरे मुंह पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाज है। शाम के 5 बजे है। अब से लेकर रात के 10 बजे तक अब आप हमारी नशरियात मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्ज़, मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी समाप्त कर सकते हैं। हमारे अगले ऐलान का चलने में इंतजार कीजिए। असलामुअलैकुम। मीडियम वेव सोची नगबिया नंग शुजबी नजबी किलो हर्स, मीडियम वेव तुर्किया नंग शुजबी नजबी किलो हर्स, दोनों एफ एम आशरिया चिक मेगा हर्स, यंग मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के दियो आकाशवाणी करगिलिन। दिन जाकपो बोदू माइल जिंग शुर सब्दुन दोनों जिल हचिल से रुको। दिन इंफ्राचुक पैतपी प्रोग्राम जुबेज लखरिंगा चंग यंग यंती दोनों हाजिर सौसत प्रोग्राम गन खन सगंग अच्छी जुन सलाम पो कबूल सौशिक। واس پو پیدو غتو صدقات سانسو کستا پروگرام نگزوک پی کفر جوگت دوایا پروگرام صدقات دی پروگرام پیان ساق بازیکسن لنگین نزد ارسحما قرآنی تلاوتنا ترجم

0: उसको अगर रेडिएशन एक्सपोजर हुआ हो, एक्सरेज हो गया या कोई दूसरे टाइप का रेडिएशन एक्सपोजर होता है, तो उसमें चांसेस बढ़ता है। तो
1: चांसेस
0: हाँ, और दूसरा चीज़ होता है, और भी रिस्क फैक्टर्स इसमें है, जैसे कि हार्मोनल थेरेपी। कोई पेशेंट अगर किसी चीज़ के लिए, या एक उम्र होता है जैसे कि 45 या 50 ईयर्स के बाद एक पोस्ट मेनोपॉजल हम बोलते हैं, इसमें आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, इसके बाद हार्मोनल थेरेपी कुछ लेते हैं, तो उसके भी हार्मोनल थेरेपी के भी रिस्क होता है कि वो कैंसर के चांसेस बढ़ा देते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के। तो और कुछ हार्मोनल थेरेपी जो बोलते हैं वो कैंसर के चांसेस बढ़ा देते हैं। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स है जो फीमेल्स में ये रिस्क
1: उम्र
0: बढ़ाते
1: हिसाब
0: हैं।
1: का
0: और
1: दिया था
0: साथ में
1: कुछ
0: जो ब्रेस्ट
1: चीजों
0: कैंसर है वो मेल में भी, ब्रेस्ट कैंसर एक कॉमन कैंसर है, मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो
1: का
0: उनमें भी यही कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं।
1: खुआ यहाँ देना
0: हाँ,
1: तस्नान थोचा जिन सुपा
0: बिल्कुल,
1: से
0: ये रिस्क फैक्टर्स भी हैं। साथ में हम कॉजेस भी इसके बोल सकते हैं, जैसे रेडिएशन हो गया, यूज़ ऑफ जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल कंजप्शन हो गया, जैसे शराब पीते हैं या कोई नशा करते हैं, तो वो भी उसमें ब्रेस्ट कैंसर का चांसेस बढ़ा देते हैं,
1: गुस्सा नहा जाए
0: गुस्सा मेल में और फीमेल दोनों में।
1: नक्षस
0: और एक चीज़ है रेडिएशन एक्सपोजर का हमने बोला, एक एक मोस्ट कॉमन चीज़ होता है जेनेटिक, एक इसमें होता है जेनेटिक फैक्टर होता
1: निगाह
0: है।
1: सुचेतन
0: जेनेटिक
1: सुधरा
0: फैक्टर मतलब जैसे किसी के फैमिली हिस्ट्री अगर हो,
1: नक्षस
0: फैमिली में अगर किसी का ऑलरेडी किसी का ब्रेस्ट कैंसर एक दो नफर को हुआ है पहले, किसी जैसे दादी को, नानी को, या किसी फीमेल को, या उसकी कोई पार्टनर को, जो उसे कोई लेडीज है उसकी अगर कोई सिस्टर है उसको अगर कैंसर हुआ फैमिली में, तो उसमें थोड़ा जेनेटिक हिस्ट्री में क्या रहता है, उसमें भी कुछ 15% चांसेस ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क रहता है। तो एक
1: यानी
0: जेनेटिक फैक्टर होता है, क्योंकि एक जीन में एक म्यूटेशन हो जाता है उसकी वजह से कैंसर हो जाता है।
1: कौन से हिस्ट्री अगर
0: हाँ,
1: चिकची का योजना
0: ये
1: का
0: चीज़,
1: तो
0: हाँ ये चीज़
1: कौन
0: इसमें
1: चिकचे
0: फैक्टर
1: आम
0: मैटर करता है। तो ये
1: चचा
0: चीज़ें रिस्क फैक्टर्स है, उसके कॉजेज ये ब्रेस्ट कैंसर के।
2: दरें तेज ब्रेस्ट कैंसर स्कॉलर दिलुक से हागोरिक ने चुत पिन डॉक्टर मोहम्मद अब्बास के नाम मीडियम में कदी आकाशवाणी कर गिले नवास पपीतो को तो सो तो गना मिनट सुम चु सोंगा सोंसु कसता प्रोग्राम यन नजत शर्बा ने चोनी फिया प्रोग्राम असर तंग हन पोइन गुलजार हुसैन दोनों प्रोग्राम पर चुक हन पोइन खदीजा बानो
3: السلام علیکم صوفی تو غیبا جگہ نفیت آکاش وانی کرگی لکنا شربنا چوئی پروگرام پوج بیسلا کورے ngar chu khatija yan sarchi gantanas ka to chenyo ni chosna juna sana pu phudmo chan so chi yele program as na bin juk su khan achino mun ka ka phone pe si san sharbana chu ni tangar gar juk su na nan me chan mer gamo sun mun bo juk se duk to khasata diri si khatus pu ngati डेथ एनिवर्सरी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू स्कूला यंथा सपोज फेरारी लिप चुके पंडित जवाहरलाल नेहरू अर्गस्थित हिंदुस्तानी पहला वजीर आजम दुना अजीम साइंसदान ची जुगसेन मीना अर्गस्थित हिंदुस्तानी आजादी मीना जद्दोजहद बसे अहम किरदार से अदा बस बिनजुग खुजरना अतीत एक दानश्वर मोहब्बत वतन दुना कौमी रहनुमाया जुगसेन में जोग खुजरना अतीत अर्गस्थित हिंदुस्तानी आजादी मीना दुना तरक्की मीना काफी मेहनत बसे खुरी जिंदगी दें सरा बसे इंसो चाचा नेहरी जन्म दिन 14 नवंबर 1879 अलाहाबाद जिरबी दियुल प्यासो मिनसो खुशखुरी इब्तदाई तालीम इंग्लैंड ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ना हासिल बस बिनसो ओदेना खुस कानूनी डिग्री हासिल बस बिनसो तालीम छम सरगम ना खो यहाँ हिंदुस्तान ला लोक सुनोस बिनसो और नती मुलुगी आजादी मीना जद्दोजहद यहाँ शामिल सो मिनसो को महात्मा गांधी जी ना बो मिलाई सो से आजादी मीना या तहरीक अंस्टूस बिनसो दिरियम ना अतीर गस्तित हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 यहाँ अतीर गस्तित हिंदुस्तान आजाद सुंग तो चाचा नेहरू अतीर गस्तित हिंदुस्तानी पहला वजीर आजम दान मिनसो खुद नती मुलुगे तरक्की मीना लस मामो बस बिनसो चाचा नेहरू अति बस भी सुनना बो ज्यादा मोहब्बत युद्ध बिनसो नेहरू जिया फ्रुबस भी सांगना बहुत ज्यादा मोहब्बत होते हैं जो दी मीना चाचा नेहरू जरे सगे दी मीन तक सिका चाचा नेहरू जरे जर बचा जो खुई जन्मदिन गते 14 नवंबर लांग अते चिल्ड्रन डे जरे और दे जक मीन का गते दीजापु मल्ला को मचा जो यानी याउ में इत्फाल जरे दीजापु मल्ला को मचा जो ताकि गति फ्रुबस भी सुन ला सारी बारे अहमियत तामे मीना गते दीजापु मल्ला को मचा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिंदगी हमेशा मेहनत ईमानदारी दुना हो बुलवतनी तालीम थोबत पिंचो हमेशा खोजेर बचो गा सुई इन नकतुन गता जिंदगी गता हमेशा मेहनत बरगोशस इन और ईमानदारी नबोगा लस बनकतुन दुना रा वतन पुन बो गद्दारी मवारा युल पुन बो मोहब्बत जसिंग अतिस लस बरगोशस इन जरे हमेशा दे सक पो तमा छात।

वाला आपको सिर्फ यही सिर्फ मियर कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि यार अंदरिंग का तो फिजिक्स का तो ना का तो आपको फिजिक्स की तालीमत आपका बढ़ना चाहिए, केमिस्ट्री बढ़ना चाहिए, सोशल आपके क्या बोलते हैं सोशल साइंस के अवेयरनेस बढ़ना चाहिए। दो मिनट पर यही फिजिकल वेलबींग यहाँ यही इंप्रूव छाचिन, यही अखलाक पर इंप्रूव छा गोचिन या यही किरदार पर इंप्रूव छा गोचिन, यही डिसिप्लिन पर इंप्रूव छाचिन। अगर कहो खुदा ना खासा दो कदम ना कहो गुंदे सी जाप ना दीरी जाप कहो चौक का तो लूज ना कहो खो खसरा है जरे। उन सारी चीजों का हमें यही पता चलता कि खसरा मिदुक पे मीना नाती फिजिकल वेलबींग मीना नाती मेंटल वेलबींग मीना नाती सोसाइटल वेलबींग मीना नारा एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं है और एजुकेशन ही टूल है पर्सनलिटी इंप्रूव मीना दासा आते जिसकी दी तालीम पे हमारा पॉइंट मोमो कहते हैं पॉइंट चीजों से सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नारा जिम्मेदार शख्स शाखा जी चोचिन तो जिम्मेदार शाखा चुए मीना ओदे सेंस पोंग ओदे स्प्रिट पोंग आता एजुकेशन इस नाचिन यार जिम्मेदार शाखा का तो छा का तो एरे जचिन इन्फॉर्मड डिसीजन लेंचिन और ये सा जिम्मेदार दान में मीना ना यार ओदे सोसाइटी ची रिसोर्स का तो ना का तो नी कंट्रोल ना को ते नी मतलब कमान ना को ते ना अते का तो ना का तो ना का तो चिक ची मतलब टीचर ची का तो ना का तो ना हटी पे का तो ना का तो ना ड्राइवर का तो ना का तो सक सा खुंतन खुती एरी यो चिन खुती एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस यो चिन कि गांग खुए जेस पर डुलची ना निको का तो तालीम याफ्ता का तो ना का तो खोज ओदे डुल भी को ईमानदार एक ईमानदार ड्राइवर बनेगा, एक ईमानदार इलेक्ट्रिशियन बनेगा, एक ईमानदार प्लम्बर की भी जरूरत है, एक ईमानदार एडुकेटर की भी जरूरत है, एक ईमानदार हमें आलिम की भी जरूरत है, एक ईमानदार हमें हटी पची जरूरत है। बदकस्मती से गाता चुत उदून माछाना कहूँ गाता ईमानदार उदे शख्स माछाना कहो मत अकाउंटेबल जरखान पर माछाना कहो मत रिस्पॉन्सिबल शख्स माछाना कहूँ गाता रिस्पॉन्सिबल गाता डिसीजन लेन मंगिन ममित इन्फॉर्म डिसीजन लेन मंगिन ममित इसीलिए गाती पूरा सोसाइटी का गाती थी इम्पैक्ट पे गाती सोसाइटी इंप्रूवमेंट नहीं मिला गाती उदे मीन न्यांग सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटीज अरखान पू सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अरखान पू इनफॉर्म डिसीजन अरखान पू या जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्सेज और द रिसोर्स पुंगस गचो यूज बचिन एनवायरमेंट टिकची इफेक्ट हो नई सोसाइटी कची इफेक्ट हो उन सारी चीजों के लिए तालीम पुगा तो ना तो ये सही डिसीजन लेंचिन और दिस दे डिसीजन पर सिर्फ यही फेवर है पूरे यही सोसाइटी ने नेशन ने दुनिया की फेवर है मगर मस अक्सर नरी स्टूडेंट नजर इन छाचिन जक पचा गति डिग्री होल्डर सुन या गति जमाना छे 20 साल पहले 30 साल पहले 40 साल पहले गति करगी ना ग्रेजुएट सुन 10 प्लस 2 सुन का तो जन का तो लगपे कर सीता नहीं इन छा और उदय सन अमुन योत पिन पीज योत पिन खुशियां योत पिन मन मजा तालीम पुका तो मन सही का तो ना का तो तालीम पुका तो गाता सही तालीम चिका तो समझना का तो दक्षण अमुन पर दक्षण ज्यादा छार गोसपा खुशी दक्षण ज्यादा छार गोसपा छा गति कुरान ने जरूरत एलुम पु जरूर مر علم پنم خدا نہ خاص تا تربیت کتو میں نہ کتو کی گالا مت تزکیہ زراتا و یزکیہم و یعلمہم الزراتا سن پہلا تزکیہ اون چنجو دکنا تعلیم چن خدا نہ خاص تا دے تزکیہ کتو میں نہ کتو نیلا کتو تربیت کتو میں نہ کتو دے علم پو ٹول ان دے علم پو بس ناس نی زندگی چمن ناس نی سوسائٹی تباہ باگین چن دو لنگ مثال چتا علم ایک ٹارچ کی طرح ہے ٹارچ مگر او دے ٹارچ پہ او دے اوت پو سی لگا او دے اوت پو کھور خان پہ ڈیپینڈنٹ نوت دو یاران سو تربیت دوت کھری میچی لا کتو لپنا کتو یری او دے اتی सही इस्तेमाल बस मिया लम्स तन मीन इस्तेमाल बचन मसु सुकून मच मीना का तो लगपे का तो देना और पुलना तो देना है उते इस्तेमाल बस मस लूट ना खसूर बचन यानी कहने का मतलब तालीम नंबर तरबियत जो जो चस मन जरूरी नजर बट नियर पोजीशन ऑफ द नॉलेज इज नॉट अ वारंटी का टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन जरे अगवा तो उसके अलावा आपके साथ क्या होना चाहिए इट शुड गेट इनकॉर्पोरेटेड विद योर वैल्यूज एंड एथिक्स आपके पास वैल्यूज एथिक्स का होना बहुत जरूरी वैल्यूज ना एथिक्स का तो मेरे ना का तो देना तालीम ना तरबियत खुदा ना खस्ता देना तालीम पुजगाता ची तरफ है क्वेश्चन देना तालीम पुजगाता गुमराही तरफ है इसीलिए तालीम ने वो सही तरबियत मन जरूरी मैंने कहा तू आता दक्षा ना मन मिसाल दे ग्रेजुएट मोमो सॉ पीजी मोमो सॉ तालीम याफ्ता मोमो सॉ गाती लोकल ऑफिसर्स मोमो सॉ गाती लोकल टीचर्स मोमो सॉ हर शोबे आता हूँ क्या बोला गाता ना मन रेमो चार वो शिमला गाती ना घुरी अंक तो ना तो मर दो नहीं बो गाता चियांग मेत पंगाती इथिक्स पर देना काम छा मटीरियल मोमिक सॉ गाता मादी जमाना क्योंकि गाती ओदे मोरालिटी ना इथिक्स जरखान पुछ हो इसीलिए नजेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिर्फ डिग्री ना जो परसेंटेज फ्री अंक तो खुदा ना खास तरबियत पु कतो में न कतो ये तालीम आता सिर्फ धोखे में परसेंटेज पु आता तबाही तरफ ला खर्चा से जिंदगी स्टूल में मिला नांग चे एग्जाम्पल कतो खुरा कतो जन कतो ये अपना आते दाना खुरा ब्रॉडन बस दुनिया के खेल में नांग चंगाता स्कूल में मिला ना चंगाता अते गाँव चिन अमे गाँव चिन नि अता ना अमा इसके रोल हो चिन खुनता खुद डोमेन कतो चिन खुनता खुद एरिया कतो चिन खुदा ना खास यानी आते गाड़ी टायर नहीं जर बात सोची साइकिल टायर नहीं जर बात सोची उदा ना कतो चिची पुस्तक तो लास्ट माबा ना कतो खो खो हेल्दी लुसमिन खो सेहतमंद नंग चीज हाचमिन इसीलिए ओदे अमाला चाम से ओदे अताला का तो तालीम का तो ना का तो दे अमाला तालीम योर पर मन जरूरी चाम से अताला तरबियत का तो ना का तो अमाला तरबियत भी मन जरूरी क्योंकि अमे लास पो अताज बांगे चमिन एरिया का ते अमा छंगे चिन एरिया का ते अता छंगे चिन इसीलिए तालीम उतर इसीलिए गाती पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिस जाहिलियत दौर पे गाता छिबस की गाना बुमुनी गाता इंपोर्टेंस मेत पिना के बुमुन चंग मिन खान जी चोक शेख
کون من زلیل چی کون حقارت نگاہ کرتا تھا جب نے دی تعلیم پتانس

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी को स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने का दर्द में बदल गया है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी, वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एशियन पुलिन एकेडमिक्स हैं दुगना का तो को ओवरऑल मतलब याना पर्सनालिटी बिल्डअप चिक्षेत जिसमें उसका डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्या जब ना आर्मी याना रिगरेस दिया ट्रेनिंग हो जो तो देना सी सर्टिफिकेशन पुल लेने सपोज एकेडमिक्स हैं दुगना का तो याना इंटरव्यू अनुगा याना दीरी पॉइंट्स हो जो दैट्स वन आता एनएसएस आयो एनएसएस यानु आता फ्रून वॉलंटियर बचिन सोशल स्कीम्स अगानु जैसे कि आता स्वच्छ भारत अभियान यानु डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वो म्यूनसिपलिटी ने वहाँ से कॉपरेट बस से दी एनएसएस यानु फ्रून लाया सर्टिफिकेशन है जो एनएसएस यानु दें एनरोल सों से वो दें आती कम्युनिटी सर्विस ही अच्छा गाँव गाँव सों से मतलब पोषणी स्कीम इन न का तो या हेल्थ रिलेटेड इन न का तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन का इन न का तो दोन गाँव में का याना एनएसएससी टीम उन गाँव सगासों से कौन से दें अनु कि याना मीन ला दिच्छी सुन याना लिप चुचिं जो दोना याना एकेडमिक से बियों नियंग अतं छह न का तो अच्छी प्रूनिस याना एज ए टीम यहाँ लास्ट बस ना आउटरीच प्रोग्राम सकान स्कूल सक कंडक्ट भेजू ताकि गाँगा फ्रू सकान साइंस रोजान पु गाँगा भेसा पुस्केत शेषु पु फिलजू दोनों गाँगा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी हो जू दक्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो स्पेसिफिक हो जू यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जब से गाँगा 2019 के बाइफरकेशन सुंग देखे गाँगा इंटर्नशिप पु मतलब स्पेसिफिक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख खुद दो गाँगा आईआईटी सुना है जो जैसे आईआईटी बॉम्बे हो गया आईआईटी दिल्ली हो गया आईआईटी कानपुर हो तीर ग्यालर ग्याला मना वेल एस्टेब्लिश पुराना आईआईटी से नुंगा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी हो दो ने नुंगा चस फ्रून ला मतलब गाइड बसे यान में सब पुंगा चस पार्टिसिपेशन खुआ छच वे जू और दया पार्टिसिपेशन बसे द इंटर्नशिप उन्हें नुगाना लाशिक बसे न गो दो नुंगा चस नेशनल कॉन्फ्रेंस सगानु इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सगानु फ्रून ला खुंती दे रिसर्च उन गाचस तन मी दुनिया छुपे गुन छुपी गाचस दोन न मतलब कोशिश बेन हो जू
1: कसा छान एरजमाना सरपी बसे मोल सांजु की डिग्री कॉलेज कारगिल इस फोकस पर सिर्फ एकेडमिक से किता मत बल्कि नाता ऑलराउंड डेवलपमेंट किता मैंने था जू छान दिया नु यंग स्पेरची दियो दुख पजू की एनसीसी जरे एनएसएस जरे या नाता सपोर्ट जरे दुन गांव में आता नाति फिजिकल फिटनेस फिलांग में ना बेहतरीन शेदु खाजू या जिम सिस्टम चियो न कतो छाना दिया नु एंडस काफी कोशिश बेन ची यो तें सुजू छाना दो ची गेरेस मोर्चा जू की नाता एनसीसी जरे एनएसएस जरे दुन गांव में अनु इन्वॉल्वमेंट पुगा चो छाचा इन या दुन इन बो प्रोसीजर पुची चियो और साथ ही दिया नुक सिलेबस है इंक्लूड छचिन दुनी एग्जामिनेशन पुगा चो प्रोसीजर चिकी छचिन दुन गांव में रे साथी एलिब्रेट बस मोर्चा जू कैसा
0: बख्शी जो एनसीसी याना ट्रेनिंग पूछा से बना ता अलग उत्पन्न एज ए कोर्स संग अच्छा जक्स हो दिया दिया नो एनईपी अंडर एन याना मेजर एंड माइनर कोर्स रखन का तो दख संग आता सिलेक्ट बार को से जो मेजर पेनु खुश क्रेडिट पु ख्यारिक स्कोर बचिन माइनर पेनु खुश क्रेडिट पु कम स्कोर बचिन जो या ता एनसीसी अनु गाता एज ए माइनर सब्जेक्ट जक्स हो जो देन प्रूव एनसीसी मतलब खुश सी सर्टिफिकेशन चना चमचक एग्जाम गागा सब्जेक्ट उन खोज देनु फेस बाद ना का तो उदे स्कोर ला देना फ्रेमवर्क में नुआचा सिलेबस पर डिजाइन बस हो जो तायना सपोज चिची के मेजर माइनर ला एनसीसी मजाक ना का तो आया देफ्रूसा एनसीसी जक पेंचिन यान चिंजो देफ्रूसा चिची का सपोज फिजिक्स ना मैथ्स इंटरेस्ट हो दिया लेकिन खोज एनसीसी जक पेंग यान चिंजो ना का तो यान चिंजो दी एनसीसी सर्टिफिकेशन पु गंग में फिला याना एनरोलमेंट पु ओपन हो चिन दे फिला याना सेशन इंक लगभग जुलाई अगस्त एनु फॉर्म बिंग चिन ओदन उंगतस प्रॉपर फ्रून ला एनरोलमेंट बचिन एनरोलमेंट बस ना खोंगा यूनिफॉर्म वर्दी दोन गांव में अरेंजमेंट बचिन जो देन सोका एनएसएस यानुगा अचस याना एकेडमिक सेशन पुचोक शुरू सांसना जुलाई अगस्त एनु देन उगाना एनरोलमेंट इन अचस अपॉर्चुनिटी ता मजो स्पोर्ट्स याना माने वेल एस्टैब्लिश गाचा सेंटर हो जो दक्षा मतलब गवर्नमेंट दी फंडिंग ही हुआ जैसे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ही सपोर्ट इस बसे गाता स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पो इंडोर स्टेडियम माने वेल फर्निश्ड दासा अंडर कंस्ट्रक्शन हो जो होपफुली दिचिक दो कंप्लीट सचो तो गती जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स होता जैसे कि आर्चरी इन दोनों का फोकस तंग मजू और फ्रून याना इंटर कॉलेज लेवल इंटर यूनिवर्सिटी लेवल का गाता स्टेट लेवल का नेशनल लेवल का फ्रून याना पार्टिसिपेशन लंखे रेजू पिछले बार गती फ्रून मैराथन या यूटी लद्दाख का अव्वल जू देखे ना अति फ्रून यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर लंगाते खेस पिंजू दे टेबल टेनिस एक्सलेंट परफॉर्म बसे यो सिंजू बक्सेस
1: ताना यंग स्पेरची गेरांडो टीट पजू की गता external funded research project is called Lairis Ngata Sasi Molchaju. Do the project Pugats of Project India Nugatsua eligible Chachain, young Gatsua Matifrun is doing a final in motion. This called Lairis do elaborate by Molchaju or Matangatsu Stachik and Matifrun is the participate by Ninchain the Shasperis Molchaju.

0: अरबिक हो गया, पर्शियन हो गया, इंग्लिश हो गया, जना दोन गता उर्दू यो दोन गता लैंग्वेज है जो साइंस है नुक गता बेसिक साइंस है नुक जन गता गता बॉटनी जोलॉजी यना फिजिक्स केमिस्ट्री दोन यो जो देन सो गता कॉमर्स सब्जेक्ट आयो जो और गता साइकोलॉजी यना सोमा इंट्रोडक्शन छखनची की सब्जेक्ट चेंज जो दोन बायोटेक्नोलॉजी ने बायो केमिस्ट्री सोमा इंट्रोडक्शन छखनी सब्जेक्ट चिकिन जो गता 2019 सिर गैप नयो संग दोन गमा गता रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट और फ्रूल अपॉर्चुनिटी भी सब्जेक्ट आयो जो बख्शिश
1: कसा जो रजा साहब पेरस सल्पो बसे गता डिग्री कॉलेज कारगिल स्कूल ला दोना देन यो पी स्किल कोर्स उन यंग दो मिन मंगता एडमिशन प्रोसेस यंग ची गता रुगोस दो मिन गता स्पेरर यो मन्ना दोन स्कूल लेरेस सल्पो बसे मोर जु गतर दंग मा बेजु गता स्पेरर ने लेगी किमल लुशा दु कोजु गता तो स्पेशल इजाजत चिता मिन दो जु अर दंग मा बेत गति शेचो ति प्रोबाइज बिस कोनेस दी प्रोग्राम पर देमो बसिंग यनो यंग दी प्रोग्राम पिकना कोइस फन के ग्लेन मी फ्रलोस बुक यंग सरचिक आकाशवाणी करगिली पूरा टीम इचोसना यरा यंग सरचिक ओजु सरिंग मजे जु यरे जिरी रिंजन खसकोन यरा आकाशवाणी करगिली स्टूडियो अस्पे तेरे रिंजन खसकोन यरे संगता प्रोबाइज बिस कोन साजु यरा यंग सरचिक ओजु सरिंग मजे जु दनेमबो दिनी सी प्रोग्राम बथमातोन ना सईद काजिम हुसैनिया इजाजत छस देबोस यजु खुदा नर सखमोनी फखरे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। नौ दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।

0: मैं एलजी से मुलाकी हुआ। आज पूरे जम्मू कश्मीर में ईद उल अजहा की तकरीब सईद तुज़ को एहतिशाम और मजहबी जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है। इस ताल्लुक से वादी की मसाजिद, खानकाहों, जियारतगाहों, बुक्काजात और इमामबाड़ों में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमाआत मुनअक़िद हुए। इस दौरान उलमा ने ईद उल अजहा के फलसफे पर तफसील से रोशनी डाली। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा असार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनअक़िद हुआ, जिसमें काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। उन्होंने आलम इंसानियत की बका और जम्मू कश्मीर में अमन अमान और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी।
1: अल्लाह अकबर

0: के साथ साथ एक अहम जो तकाजा है वो ये है कि इस ईद पे हम अपने उन हमसायों या हमसे जो दूर रहते हों, जिनकी जान पहचान हमें है, जो कस्बे पुरसी की हालत में हों, जो जरूरतमंद हों, उनको नजरों से ओझल नहीं करना है।
1: MLA लालचौक एहसान परदेसी का ईद पैगाम।
2: मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को ईद उल अदा की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह आपकी हर कुर्बानी कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी को खुशियों, सुकून और बरकतों से भर दे।
1: समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले कई अहम शख्सियात ने भी ईद उल अजहा के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने पैगाम में कहा,
3: मैं बशीर आरिफ अपने तमाम सुनने वालों को, मद्दाहों को, दोस्तों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ

0: रवां। चेरी सीजन के दौरान अब तक 45 टन ताजा चेरी रेल के जरिए से मुल्क के बड़े मार्केटों तक पहुंचाई गई हैं। जम्मू डिवीजन के सीनियर डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर उच्चित सिंघल ने कहा है कि रेलवे चेरी को मुअस्सर तरीके पर मंडियों तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.6 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43.5 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:22 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:35 पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। खुदा हाफिज।
1: आदाब। आज का तबसरा लेकर मैं रिहाना अजीज। समीन, ईद अल अजहा महज एक मजहबी त्यौहार नहीं बल्कि एसार, कुर्बानी, अतात और इंसान दोस्ती का एक अजीम पैगाम है। ये दिन हमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बेमिसाल फरमाबरदारी की याद दिलाता है, जहाँ एक बाप ने अल्लाह के हुक्म पर अपने सबसे महबूब बेटे को कुर्बान करने का इरादा किया और एक बेटे ने भी रजाए इलाही के सामने सर तस्लीम खम कर दिया। यही वो जज्बा है जो ईद अल अजहा की असल रूह को वाजह करता है। आज के दौर में कुर्बानी की हकीकत को सिर्फ जानवर जबा करने तक महदूद कर दिया गया है, जबकि इस्लाम कुर्बानी को एक वसी तर तसव्वुर के तौर पर पेश करता है। असल कुर्बानी इंसान के नफ्स, लालच, खुदगर्जी, नफरत और अना की कुर्बानी है। अगर इंसान अपनी ख्वाहिशात को काबू में न ला सके, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा न हो सके और माशरे के कमजोर तबकात के दुख दर्द को महसूस न करे, तो महज रस्म अदा करना मकसद ईद नहीं हो सकता। ईद अल अजहा हमें समाजी मसावात और माशरती हम आहंगी का दर्स भी देती है। कुर्बानी के गोश्त की तकसीम के जरिए इस्लाम ये पैगाम देता है कि खुशियों में महरूम तबकात को शरीक करना एक दीनी और इंसानी फरीजा है। ऐसे वक्त में जब दुनिया माशी अदम मसावात, जंगों, भूख और नफरतों का शिकार है, ईद अल अजहा का फलसफा इंसानियत के लिए उम्मीद और इत्तेहाद का पैगाम बनकर सामने आता है। बदकिस्मती से जदीद माशरे में कुर्बानी की रूह कहीं न कहीं नमूद नुमाइश, फजूल अखराजात और मुकाबला बाजी की नजर होती जा रही है। सोशल मीडिया के दौर में इखलास की जगह तहशीर ने ले ली है, हालांकि कुर्बानी का असल मकसद अल्लाह की रजा और इंसानियत की खिदमत है, न कि समाजी बर्तरी का इजहार। जरूरत इस अमर की है कि हम ईद अल अजहा को सिर्फ एक त्यौहार के बजाय एक फिक्री और इखलाकी तहरीक के तौर पर समझें। जब तक हम अपनी जात के अंदर मौजूदा मनफी रवैयों को कुर्बान नहीं करेंगे, तब तक कुर्बानी की असल रूह हमारे माशरे में पैदा नहीं हो सकेगी। यही ईद अल अजहा का हकीकी पैगाम और कुर्बानी की असल मानवियत है। तबसरा खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, शब खैर।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस सिरिंद।
3: समीन, अभी आप आकाशवाणी श्रीनगर से उर्दू में खबरें और तबसरा समाप्त कर रहे थे। मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्ज़, मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाज है। शब के 8 बजे हुआ चाहता है। आइए सामिन, प्रोग्राम समाप्त कीजिए फौजी भाइयों के लिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आप समाप्त कर रहे थे मिताली सिंह को, कलाम थे आज़ाद जुलंधरी की। प्रोग्राम की अगली पेशकश में आइए समाप्त करते हैं तलत अजीज को, कलाम है जिगर मुराद आबादी की।
1: अपना ही साये नरगिसे मस्ताना बना दे, मैं जब तुझे जानू मुझे दीवाना बना दे। कतरे में वो दरिया है जो आलम को डुबो दे, जर्रे में वो सहरा है कि दीवाना बना दे। आलम तो है दीवाना जिगर हुस्न की खातिर, तू अपने लिए हुस्न को दीवाना बना दे।

दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम खत्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जय हिंद। सामिन, अभी आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे फौजी भाइयों के लिए। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी करगिल है। वक्त खबरों का हुआ चाहता है। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में खबरें रिले करेंगे। रिले का थोड़ी देर इंतजार कीजिए।

जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है।

0: इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक PDS योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
3: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बिना स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: विकसित भारत की तैयारी ये है अपना प्रयास।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।

0: पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
1: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्यक्षेत्र में उठा सकते हैं।
2: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
1: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दिन और रात के तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैम्प दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Center approves extension of Sarthak PDS scheme to modernize public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. And India to host 2027 Asian Relays and 2028 Asian Indoor Championships. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme, called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
3: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज FCI वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड ए डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन system through the use of technology.
2: Public distribution system ko hum kaise modernize kar sakte?
1: The minister said

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम

0: Tiruvananthapuram and Kannur. The officials were attacked in Tiruvananthapuram while they were returning after carrying out searches, and their vehicles were allegedly vandalized. BJP State President Rajiv Chandrasekhar condemned the attack, while State Home Minister Ramesh Chennithala assured strict action against those involved. The CPM, however, termed the raids politically motivated. Indian shooter Isha Singh today broke the world record in the women's 25-meter pistol event at the ISSF World Cup in Munich. 21-year-old Isha earned 43 points from a possible 50 in the final to surpass the previous record of 42 points held by South Korea's Kim Ye-ji and claimed the gold medal. India has been awarded the hosting rights for the 2027 Asian Relays and the 2028 Asian Indoor Championships. The decision was taken at the Executive Council meeting of the Asian Athletics Association held in Hong Kong ahead of the Asian Under-20 Championships beginning tomorrow. World Athletics Vice President Adil Sumariwala said the 2027 Asian Relays will be held in Chandigarh, while Bhubaneswar will host the 2028 Asian Indoor Championships. In IPL cricket, Rajasthan Royals were 234 for 6 in 18.1 overs against Sunrisers Hyderabad in the eliminator match in New Chandigarh when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Centre approves extension of Sarthak BDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. That is all in the news at 9. Good night.
1: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं तनवीरुल फरीद। पहले खबरों की सुर्खियां। मरकज ने अवामी निजाम तकसीम को जदीद बनाने के मकसद से सार्थक पीडीएस स्कीम की तौसी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान कमजोर अफराद का ध्यान रखने के लिए शहरियों पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन की एसआईआर मुहिम की कानूनी हैसियत को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये मश्क आजाद और शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करेगी। आसाम असेंबली ने यकसा सिविल कोड बिल को मंजूर कर दिया है और इस कानून को पास करने वाली मुल्क में तीसरी रियासत बन गई है। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ख्वातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने म्यूनिख के आईएसएसएफ आलमी कप में तलाई तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने मरकजी काबीना की जानिब से सार्थक पीडीएस के दूसरे मरहले के लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दिए जाने को सराहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि सरकार गरीबी दूर करने की स्कीमों को टेक्नोलॉजी से लैस कर रही है ताकि उन्हें और ज्यादा शफाफ और आसान बनाया जा सके। वजीर दाखला ने मजीद कहा कि एआई की मदद से मुस्तफीद होने वाले अफराद का अंदराज जीपीएस के जरिए ट्रैकिंग और क्यूआर कोड जैसे आला टेक्नोलॉजी निजाम के जरिए गरीबों को स्कीमों के 100% फायदे मुहैया किए जा सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रियासतों की बढ़ती हुई लॉजिस्टिक लागत के लिए इक्तिसादी मदद की भी गुंजाइश रखी गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए अहदबंद है कि मुल्क में अवामी निजाम तकसीम पीडीएस के जरिए हर जरूरतमंद फर्द को वक्त पर अनाज फराहम हो। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि इससे समत में पीडीएस को ज्यादा जदीद और मुअस्सर बनाने के लिए फैसला किया जा रहा है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि ये इकदाम पीडीएस के तहत फराहमी लॉजिस्टिक और नकलो हमल के इंतजाम को मजीद

0: जल्द शफाफ और मुअस्सर बनाएगा, जिसके साथ साथ ये शिकायतों को हल करने में तेजी भी लाएगा। इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी CCEA ने आज PDS में खुदकारी के साथ राशन ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग इनकम में इमदाद के लिए स्कीम सार्थक PDS को एक जामे स्कीम के तौर पर जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस स्कीम को 16वें मालियाती कमीशन अवार्ड मुद्दत में मंजूरी दी गई है, जिसमें मरकज के हिस्से के तौर पर 25,530 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए इत्तलात व नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये स्कीम अनाज के एक रियासत से दूसरी रियासत में नकलो हमल के लिए रियासती एजेंसियों, राशन की दुकानों और अवामी निजाम में तकसीम की जदीदकारी में मदद फराहम करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: जनाब वैष्णव ने कहा कि इस स्कीम में तीन बड़े AI पर मबनी मॉड्यूल होंगे, जिनके नाम हैं निर्मल, आशा और सक्षम। उन्होंने कहा कि निर्मल एक AI की क्यादत वाली रियल टाइम PDS मुस्तफिदीन का निजाम है। आशा एक कसीर लेसानी मस्नूई जहानत का शिकायतों के इजाले और शहरियों को मुंसलिक करने का प्लेटफॉर्म है, जबकि सक्षम AI पर मबनी सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म है, जिसमें गाड़ियों की ट्रैकिंग भी होगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि यह स्कीम खुराक के तहफ्फुज के कौमी कानून के तहत अहाता किए गए 81,35,00,000 अफराद के लिए हुकूमत के अहद को पूरा करने की जानिब काम करेगी। उन्होंने कहा कि यह स्कीम मौजूदा PDS स्कीम की जगह नहीं लेगी।
1: ये सुधार है PDS के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में, और PDS के बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और PDS एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो जितना मुमकिन हो ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतें। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने सबको मशवरा दिया कि वो अपने जिस्म में पानी की कमी ना होने दें और जब कभी घर से बाहर जाएं तो पानी के बोतल के साथ जाएं। गर्मी के बाद रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ती हुई परेशानियों के बारे में जोर देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह के मौसम में हसासियत मदद का एक बड़ा जरिया बन जाती है। उन्होंने सलाह दी कि अगर कोई प्यासा हो तो उसे पानी का एक गिलास पेश करें। उन्होंने हर किसी पर यह जोर भी दिया कि वो अपने कुनबा के अफराद और अजीजो अकरबा के राब्ते में रहें और उनकी सेहत के बारे में मालूम करते रहें। उन्होंने ज्यादा मिकदार में पानी पीने की याद दहानी कराएं, उन्हें तीसरे पहर सख्त धूप में बाहर निकलने से गुरेज करने और ज्यादा से ज्यादा आराम करने के लिए कहें। उन्होंने मजीद कहा कि जानवरों और परिंदों को जहन में रखते हुए घरों के बाहर बालकनियों में, छतों पर, दुकानों पर या दफातर में छोटे बर्तन में पानी भरकर रखें। वजीर आजम ने हर किसी पर जोर दिया कि वो इन मुश्किल अय्याम में मुकम्मल हसासियत और जज्बे के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्यक्षेत्र में उठा सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की, किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
2: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी

0: ने सिक्किम के शहर गैंगटॉक में पिंक सिटी रनर अमा दीदी बाहिनी नामी ख्वातीन मरकूज सरकारी ट्रांसपोर्ट सर्विस को आज झंडी दिखाकर रवाना किया। सिर्फ ख्वातीन के लिए ये बस सर्विस पूरे तौर पर ख्वातीन अमले के जरिए ऑपरेट की जाएगी, जिसका मकसद ख्वातीन मुसाफिरों को महफूज, आरामदेह और सस्ता ट्रांसपोर्ट फराहम करना है। बाद में दिन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गैंगटॉक में सिक्किम यूनिवर्सिटी की 7वीं तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की मजमुई तरक्की के लिए शुमाल मशरक की तरक्की इंतहाई अहम है।
1: नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में असीम प्रतिभा है। सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहें और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े।
0: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी जामे नजरसानी की इंतखाबी कमीशन की कार्रवाई को कानूनी एतबार से जायज करार दिया है और ये भी कहा है कि आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए आईन में इस तरह की नजरसानी के लिए कहा गया है। अदालत आलिया ने कहा कि चुनाव कमीशन को आवामी नुमाइंदगी से मुतालिक कानून मजरिया 1950 की दफा 324 और इसके तहत बनाए गए जाब्तों के मुताबिक चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी नजरसानी करने का अख्तियार हासिल है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाला बागची पर मुश्तमिल बेंच ने रिट दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए ये बात कही। इन दरखास्तों में गुज़श्ता साल जून में बिहार में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी जामे नजरसानी करने के इंतखाबी कमीशन के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। अदालत ने कहा कि SIR का अमल आजाद और शफाफ इंतखाब करने के मकसद को हासिल करना रहा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से सुनाए गए इस फैसले में ये भी कहा गया है कि जब खुद कानून में इंतखाबी कमीशन को किसी भी वक्त खुसूसी नजरसानी कराने को कहा गया है तो इस सूरत में कमीशन के नजरसानी के अमल को महज इस बुनियाद पर नाजायज करार नहीं दिया जा सकता कि मौजूद तरीक़ाकार माजी में कराई गई नजरसानी से मुताबिकत नहीं रखता। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि इंतखाबी कमीशन ने अपने कानूनी इख्तियारात से तजावुज किया है। अदालत ने मजीद कहा कि चुनाव कमीशन ने जो वजूहात रिकॉर्ड की हैं उनका वाज़े मकसद इसकी बुनियादी सियासत को बरकरार रखना है। इनमें 4 दहाइयों से ज्यादा मुद्दत पहले खुसूसी नजरसानी कराना, पिछले वर्षों में बड़े पैमाने पर राय दहिंदगान का इजाफा होना और हजफ करना, नीज तेजी के साथ बढ़ते हुए शहरी इलाके और नकल मकानी के मामलात शामिल हैं, जिनकी वजह से चुनाव फहरिस्तों में मुसन्ना साजी और अदम दुरुस्तगी का इम्कान हो सकता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। असम कानून साज असेंबली ने आज यकसा सिविल कोड बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद असम इस तरह के बिल को मंजूरी देने वाली शुमाल मशरक में पहली और मुल्क में तीसरी रियासत बन गई है। यकसा सिविल कोड असम बिल 2026 को पीर के रोज 16वीं असम लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले इजलास के दौरान पेश किया गया था, जिसे ऐवान ने आज इजलास के आखिरी दिन मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने रियासती असेंबली में यकसा सिविल कोड मंजूर किए जाने पर असम के लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि यकसा सिविल कोड उस वक्त से बीजेपी का अज़्म रहा है जब से इसका कयाम अमल में आया है। अकलियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज तमाम हाजियों को मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब रिजिजू ने कहा कि हुकूमत ने इस साल हज के दौरान भारतीय आजमीन हज को सहूलत फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC ने पहली बार सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 के लिए आरजी आंसर की जारी की है। एक बयान में कमीशन ने कहा है कि जो उम्मीदवार इम्तिहान में शामिल हुए हैं वो 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर दस्तयाब ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल पर अपना रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं। एक बड़ी छापेमारी में गुजरात के इंसदादे दहशतगर्दी के स्क्वाड और भारतीय साहिली मुहाफिजों ने आज गुजरात में कुछ जिले के साहिल के पास 11,000 करोड़ रुपए से

ज्यादा मालियत की मुश्तबा मनशियात के 115 पैकेट जब्त किए। ये मनशियात एक कश्ती से बरामद की गई जो कच्छ मुंद्रा बंदरगाह की जानिब जा रही थी। म्यूनिख में मुनक्किदा ISSF वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की निशानेबाज ईशा ने 25 मीटर पिस्टल शूटिंग मुकाबले में शानदार कारकिर्दगी का मुजाहिरा किया है। उन्होंने मुमकिना 50 पॉइंट में 43 पॉइंट्स हासिल करके एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। इससे कबल ये रिकॉर्ड 42 पॉइंट्स के साथ जुनूबी कोरिया की किम येजी के नाम था। भारत के शहर चंडीगढ़ और भुवनेश्वर को आइंदा बरस मुनक्किदा होने वाले एशियाई रिले और साल 2028 की एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के हुकूक दिए गए हैं। इस बात का ऐलान हांगकांग में मुनक्किद होने वाली एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान बर्रेआजम एथलेटिक्स की गवर्निंग बॉडी ने किया। एशियन एथलेटिक्स काउंसिल की मीटिंग एशियाई U20 चैंपियनशिप से कबल मुनक्किद हुई जो 28 से 31 मई तक जारी रहेगी। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने अवामी निजाम तकसीम को जदीद बनाने के मकसद से सार्थक PDS स्कीम की तौसी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान कमजोर अफराद का ध्यान रखने के लिए शहरियों पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन की SIR मुहिम की कानूनी हैसियत को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये मश्क आजाद शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करेगी। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ख्वातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने म्यूनिख के ISSF आलमी कप में तलाई तमगा हासिल किया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।